सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। पवने मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, ज्ञान

आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान, नानक जिसनू लगा तिस मले लगा सो प्रवान भला दूजा, जो जी होए सो गवे मौका के आवाओ, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ना मला दूजा, नाल आने दोस्ती कद ना आवे रास, जिहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुकुना चले कही बने अरदास।

ऐसे दीन दयाल सतगुरु पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे दिन श्री करतारपुर साहब विखे ज्योति जोत समाए तिना सतगुरां दा ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरबां बेअंत संगतां सचखंडा श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रहियां हन। जत्था शकत भेटावां अर्पण कर रहियां ने सतगुरु जी महान कृपा करने सरबत साध संगत दी हाजरी तिल फुल।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पीख को कह न सकत किह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

सहज समाध अगाध साध संगत सपरंपर अवगत अलख अपीव आगम आगमित अपरंपर जारत कर मुलतान दी फिर करतार पुरे नौ आया चढ़े सवाई देह दिही काल जोग नानक नाम ते आया विण नावै होर मंगना सिर दुखां दे दुख सबाया मारिया सिक्का जगतर विच नानक निर्मल पंथ चलाया थापिया लहणा जीव दे गुर आई सिर शतर फिराया ज्योति ज्योत मिलाए कै सत गुर नानक रूप वटाया लख न कोई सकई आचरज दिखाया काया पलट स्वरूप बनाया लख न कोई सकई आचरज दिखाया

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सहाओ चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक क्या सुनंदो कूड़ वन्यन पामन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो

वन्यन पावन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी शांत तेन कोल कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहिले जिन हर हर रसना पणिया राम से सहज सुहिले गुण है अमोले जगत उदारण आई पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लगाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिन का लेखा न गणया कहो नानक तिस को

काट काट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाने कह नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै साध कुरबाने सलोक देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय काटे वुठा सच तनी शांत

0: तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाई तुद कर मान महता, तेज अपना आप जर
1: सर्व कला परपूर जी सहज कथा, नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता। सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत।

सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै।

0: पैगंबर के ते गाने न परत ते भूमि ही ते हो कबीर भूमि ही मिले है
1: भूमि ही ते हो कबीर भूमि
0: ही मिले है
1: जैसे एक आग ते कनु का कोटी आग उठा
0: यारे न्यारे हो कबीर आग में

0: छत्र ही की छाया कई को सलम चलाता है,
1: बड़े बड़े राजन को दावत भी रखते,
0: बड़े बड़े राजन को द्रप को दलता है,
1: मान से महीप और दलीप कैसे छत्रधारी,
0: बड़ो अभिमान भुज दंड को करता है,
1: दारा से दलीसर दुर्योधन
0: से मान तारी,
1: दारा से दलीसर।

चाओ पई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरण रमन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करियै सब बैरन को आज संगरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम हे शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझ जू करी अहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी आहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो भद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन कट कट के पट पट की जन जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो जेते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी भूज उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ

भावत वेदान ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पायो राव कहीं भूपा।

अंडज जे रज से तज कीनी युत पुज खान बाहर रच दीनी कहूं भूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कठा सगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सुजम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संघरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह स्वय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा

जग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्वठार मोह हो सहाई दुष्ट दुख तेले हो बचाई खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्वठार मोह हो सहाई दुष्ट दुख तेले हो बचाई सवैया

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यो। श्री आसपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो दोहरा।

दान बबेक दान विसाह दान भरूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार बोलो जीवा गुरु।

गोरपुर की शरणाई तिस है प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लेवलाई तिस हे प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लेवलाई वाहे गुरु जी का खालसा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अर

संत जना मिल हर जस गाय, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता मत तत महत देव सदा।

0: पहला सच तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुदया खैलक करोड़ सच्चा सप्तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच निकच महला पहला
1: वडी वड्याई जा वटाना वडी वड्याई जा सच ने आओ वडी वड्याई जा ने चल थाओ वडी वड्याई जाने आलाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है
1: जाको आप करे।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगाए प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाहा विस्माद उज्जड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े।

0: पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खार पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते वास पड़िए जेती यार जा पड़िए जेते सास नानक लेखा एक गल और हूं मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पवया ते तो लव्या बहु पेकिया दे ही दुख दिया सोहवे।

0: नाथ धरयो
1: किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमारथ सतसंगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने है शिव बिरंच धर ध्यान निते जिस भेद बखाने निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बस
2: सोई नाम शिवर नवनाथ निरंजन शिव सन काज समुद्रिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरिया उदो अक्रूर तिलोचन नामा कल कबीर किल विक हरिया सोई नाम अश

0: अस राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दीन ऊर अरस गुरस। तुद डिठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहु सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सब नांदावे सजन सचा पात साहु सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाहो। सतनाम

ते तुके एक ओंकार सात गुर प्रसाद किस हों जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दीस वड़ा बड़ेरा सो सो खाको रलसे निरपौ निरंकार पाव खंडन सब सुख नव निद देसे किस हा जाची किस आराधे जा सब को कीता होसे जो जो दीस वड़ा वडेरा सो सो खाको रलसे निरपौ निरंकार पाव खंडन सब सुख नव निद देसे हर जियो तेरे दाते राजा मानस बपड़ा क्या सालाहे क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिस

निखुट ना कभी जाए। आनंद भया सुख सहज समाने, सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, आनंदन नाम बखानी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमानी। जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किस कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले नानक जन तुमरा,

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किस हा जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी। जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। निरपाव निरंकार भव खंडन सब सुख नव।